Ζούσε λα πάνε πάλι μπασάια τζιαζό, είναι πάλι γίνεται σου να τη πει σα κολλάσει τα του νουγαλάντσε λα σε κουσά. Τζιαζό σα γύρω σμιλά, αλλιώ τζιαζό να παντού. Τι είναι να σου να τη λα, αλλιώ πρωτοί μάγκαλ βαβοί, τζιαζό είναι πάλι. Πετά ίνισε, μια τα ήτοκο. Το Νεπάλ σαμπατ εγάρ σου τσαϊάλη, γκουλάγα δουάδε σίζουλα, αλλιώ το μπαδρό τη σκοτή. Τζιέντζι αντολον. जुगु तचिदा ता अलि सरकार थौय दिनी या ता जेनजी सहित दिवस तका घोषणा यासे थौ सार्वजनिक विधान बिगुजुल थौ अथे विश्व फिजियोथेरापी दिवस अलि अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस न जेनजी सहित दिवस से बारे सुसु खते दक्षिण सुगे खख भाद्र 23 गते जेनजी आन्दोलन जुल एकदमै शान्तपूर्वक जुगु आन्दोलन ए कुस्पेक्स या चाहिँ हिंसात्मक रूप काल अलि यो कुसा थौ ज्यान नब्ले मनके माला राज्य पक्ष चाहिँ गोली उले चलेना युगको युवा थिए बुझ्यानु होला अहिले उही फलस्वरूप हान 24 गते देशभरि तोडफोड नजुल सिंहदरबार निसेकया देश एकदम प्रमुख प्रमुख थामला अदालत राष्ट्रपति भवन निसेकया नेता तेगु थगु व्यक्तिगत था व्यातकन मलेन अहिले सरकार 2082 मङ्सिर 15 गते चुङ्गु मन्त्री परिषदीय बैठक जेनजी सहित दिवस तका चाहिँ हनेगु रका चाहिँ घोषणा या गुजुल बोले आखा चाहिँ थो फुलाङ्गु हे जुल थो निर्णय फुलाङ्गु रहेले आयागु सरकार वे न्यो या गुए जुल मुखला सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री जुबले हे थो घोषणा या त गुजुल या चाहिँ आठो दक्षिण धुनी गुली जेनजी तेस थगु हि उले चाहिँ फोङ्कल मुखला थगु ज्यान हे फोङ्कल ओले आख दिसे परिवर्तन जुग दुलाकी मधुले वन त्यसा मूल्याङ्कन यागु दिन थमे थिएछ यो कोही को मनु ते ज्यानु होला अलि बयासी अपो मनु त घाइते जुल म घाइते जु पिन गु आयागो अवस्था चाहिँ तस्को हे मच्छुङ्गु अवस्था दु यो कोही मलाई घुमा घुमा आतकन उपचारिया मालचुङ्गु दु तर सरकार छुए ग्वाली मया धाइगु खन्दन जिसमा इलेभेन जना ओइसना यसा थो दिया त आ छगु नगु दि कथा चाहिँ जेनजी सहित दिवस तका चाहिँ हनेगु घोषणा जुल उयो कथा थौ सार्वजनिक बिदा जुल अलि जेनजी ते गुहे आन्दोलन याना देशे चाहिँ तरहगु यो पावल सत्ता परिवर्तन जुल राष्ट्रपा बहुमत या सरकार देका चाहिँ चुन्छन तर सरकार चाहिँ जेनजी त लगायत नेपाल या दुक्को नागरिक पनि त जिपी चाहिँ ज्याया त वैपी तका चाहिँ अनुभूति बिके फया चुने कि म फया चुनले वन मूल्याङ्कन यागु यी थिए जित चाहिँ त ज्याजो सदकले नापाङ्गो मेते थिएन ज्याजो नेपालले छिन्दिन सुना दिला

agno lo sakusa jazo nepale sa nepale jazo na padugut life biscuits alachi ni na chuna dil radio kantipur radio rashtriya chi uthagari this station ne jazo sa aji bukha pakhe hune thau ya godakle na pango bukha nepal bhasha senami pinta hana thago bukha jula nepal bhasha senami dabuya gosale ye mahanagar palika 22 wadaya gohali ye ya niwas sanskrutik chhe phula bansale aidaba nepal bhasha prashchan sahayak pinta hangudu mo paha ye mahanagar palika शिक्षा व स्वास्थ्य समिति संयोजक चिनेगान जी महर्जन कसा गनिएका हनापौ ललहागुदु कसा गनिएका हनापौ ललहागु ख रितेश मल्लया अध्यक्षता राजेन्द्र महर्जन यहाँको गुज्याजोले खुइद पुलकी अनिवार्य अवकाश बिमागो नेपाल सरकारी नियम कथ थिथि बोने कुथिया च्याम नेपाल भाषा सेनामी पि राधेश्या महर्जन प्रमिला तुलाधर कृष्ण प्यारी श्रेष्ठ हसना मैया बज्राचार्य रमा साक्य भावना वैद्य रीता अमात्य व तारा श्रेष्ठ पिन्त अवकाश जीवन सुख हने फेमा धगा भिन्तुरा नाप हनेजा यागु ख नापा नेपाल भाषा कविता जगत चोलकिन सर्वसोहरण जीवको इतिहास रुमङ्कुसे आन झिपी संक्रमण काले दुदासे मुपहा महर्जन नेपाल भाषा सेनेगु दाइगु केवल जागिर जको मखुसे भाया सेवा न याना छुनागु ख दाइगु मन निसे ताकि त नेपाल भाषा प्रशिक्षण छायक पिन्त इना पेरा दिला उगुज्याजोले विशिष्ट पहा ये महानगरपालिका शिक्षा विभाग या नगर शिक्षा विभागीय प्रमुख नमराज ढकाल विशेष पहा ये महानगरपालिका शिक्षा विभाग या शिक्षा अधिकृत केशव गेवाली नेवा सेनामी दबु छ्यान्जे वरुण प्रसाद वैद्य नेवा दे दबु छ्यान्जे सृजन मान श्रेष्ठ लगायत पिन्छ भिन्तुरा नोचु तया दिल ये महानगरपालिका शिक्षा विभाग या शिक्षा अधिकृत केशव गेवाली सामाजिक सुरक्षा कोष व कोष उपलब्ध यही सुविधा बारे थ्वाथ्वी के गुनाप नेपाल भाषा सेनामी पिन्त सामाजिक सुरक्षा कोषे आबद्ध जीवको व्यवस्था जुई ढुङ्कु घु खन कला दिल ज्याजोले मु पहा विशिष्ट पहा व विशेष पहा व पहा पिन्त नाय मल्ल लुमन्ती चिन ललहाना दिगु ख चिकपिसा शिवे ख ये महानगरपालिका दक्ले नापा नेपाल भाषा स्थानीय विषय या पठन पाठन जुल अले उके लागि सचिव नेच्या म चाहिँ अन सहायक प्रशिक्षक नेपाल भाषा प्रशिक्षण सहायक जे चाहिँ कुचे के लाका नबाट ल नेपाल भाषा प्रशिक्षण सहायक पि कागु जुल अब ये क पि दासा फ्रीड दुपि अवकाश जुई गुजु गुदु एजे च्याम चाहिँ अवकाश दुला आहन अथवा रूपमा खुइम खुइ दन्दत कि चाहिँ वेकअप पिस तोतिमाली वेकअप पिन थासे चाहिँ हान नुनु पि अन चाहिँ नेपाल भाषा बुङ्के त थिने वेकअप पि सकल गुमेसिया चाहिँ खुइ दयु उमेर ह दिउ ल्याख चाहिँ नेपाल भाषा बुङ्के मखन एसान वेकअप पि स्कुले बुङ्के मखसा नेपाल भाषा सेवा वेकअप स या नहे चुनी ढका चाहिँ बलसानाका अनि यो को वेकअप पिन त अवकाश जीवन या भी तुरान देश है जैसा आग न मेघ मिश्र

निपानु काख नलसे कुसे ज्याझो नेपाले स नेपाले ज्याझो छिनेरा छना दिलर ज्याझो स आज हि मेगु बुख बाखे बने खुशी बाल पीड़ित पिंत सोनीगा बासिया एके बद्धता रसवाया भोटी खुशी खुशी बा बाखे प्रभावित पि नाप थपि न्हावले साथ दु गुख सोनीगा या नेपा बिपि संधागु दु खुशी बाल प्रभावित लिसे थ पिना दुगो सन्देश बिग थ आइतबा सोनी गया पिसन छगु बृहत एकेबद्धता रयाली न यागु दु यया बसंत पुलिन यागु एकेबद्धता रयाली हनुमान ढोका मख वंग जनबाहा अस कमलाछी जम जुया रत्न पार्क शान्ति बाटिका या न्होने थिंक्या कोजागु गुख शान्ति बाटिका खुशी बाल मधुपिन्त श्रद्धाञ्जली दे छायसे मधुपिनी सुगतिया कामना यासे बौद्ध भिक्षु गुरुजु पिन्स परित्राण पाठ यागु दुर्गति परिश शोधनी पाठ यागु राजो दे पाध्याय पिंस स्रोत पाठ यागु ज्या जुगु ख एकेबद्धता रयाली निपा नेवा निहलुवा मानव अधिकारवादी नेता मल्लके सुन्दर सोनीगया नेपामी पिनिगु पाखे सगु वक्तव्य बना निङका दिसे सोनीगया नागरिक पिंस थौ शोक चक फोङका चुनागु मखु शोक या त संवेदना संवेदना या त गुहाली गुहाली या त पुनर्स्थापना भकने सुरक्षित नेपाल देखिगु संकल्पे हिले मागु ख झेतसे सोनीगया सकल नागरिक पि महाविपद प्रभावित छेज पि नापदु धैगु एकेबद्धता फोङका चुना धया दिल छमहे जक मनुया दुखे न सक्स्या साथ बिगु मानव धर्म ख नेपामी जुया या मसिका ख धया दिसे वैकल प्रभावित पिनिगु पुनर्स्थापना सोनीगा बासी पिनेगु साथ दिगु खन दया दिल अति वेकल महाविपद प्रभावित लागा नागरिक या पुनर्स्थापना व पुनर्निर्माण या त दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकता ते त राज्य या इनाप याना चना दया राज्य या त इनाप याना चना दया दिसे छेव लजगा या लिधसा मधेका छो पिनेगु पुनर्स्थापना राज्य गम्भीर जिमागु सडक बनेकुथी स्वास्थ्य संस्था खाने पानी विद्युत संचार व मेगु पूर्वाधार या त गुलिफु उली याक्न भिङके बागु पुनर्निर्माण ज्या न्याके भले मानव सुरक्षा वातावरणीय संवेदनशीलता व भविष्य जोखिम विपद जोखिम या त न ध्यान बिमागु ख धया दिल अथे खुशी बाले लाना मधुपिनी सीमा सुयागु ख धैगु मसी धुका छेज या त ससम्मान अन्तिम संस्कार नीति लल ह्यागु प्रक्रिया मानवीय पक्ष या त ध्यान बिया सरल सहज अवस्था देखि त न इना प्याना दिल वैकल थुगु महाविपद या इलेन थगु ज्यान पाना उदार ज्या खटे ज्या चोपी नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल स्थानीय उद्धार कर्मी स्वास्थ्य कर्मी अथे गाडी चालक प्राविधिक स्वयंसेवक लिसे नागरिक उद्धार कर्मी पि प्रति सोनीग बासिते उच्च सम्मान दुगो दया दिसे सकसित दुनुगल सुब्या देशाना दिगु खाल ज्याजोले ये महानगरपालिका या कार्यवाहक मेयर सुन्दर डङ्गोल निसे

तुम कह कनाल सकुसा ज्याजो नेपाले छिनिरा छना दिलो ज्याजो सा आम हो दे दबु लगायत मेगु संग संस्था यागु बारे जिना स तया वे बारे डिटेल न्यूज थे दे दबला विशेषना बोटे कुसी खुशी बा वया दिवंगत जुबी प्रति श्रद्धांजलि दे सागु नि सेकाया जलवायु न्याय न माग्या गु दे दबु या गन गन समिति त दु अनन चाहिँ मेगु सनेले खुता इले मत च्याका दीप प्रज्वलन या श्रद्धांजलि दे सागु ज्याया त अले नेपाल यंक हे छगु हे सो वक्तव्य जारी या त छिन सोनु पुण्यतिथि श्रद्धांजलि नाप सो वक्तव्य रका ओ वक्तव्य सिक्पिन्त जी यना बना निङ्के तेना नेपाल सम्बत 1146 गुलाथो त्रयोदशी बुधबार 2083 साल भाद्र 10 गते भोटी खुसी उगो विनाशकारी खुसी बा नाप प्राकृतिक विपदे लाना ज्यान ओपी नेवा दे दबु नुवाकोट जिल्ला समिति या दाँभरी सरिता जोशी दिउ छान्जे गीता श्रेष्ठ लवत नाप फुक्क मधुपी प्रति झिन सोनु या पुण्यतिथि स नेवा दे दबु पाखे भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली फुङ्का सुना थुगु दुःखद घटना पाखे थ मनु त मधुपी दुःख कपी सकलसित धैर्य धारण या फेमा धका विचार ह्या कुसे घापा जुपिन त याक्न लनिमा धका कामना या नचुना बेपत्ता जुपिन त तत्काल मालेगु उद्धार यागु प्रभावित परिवार या त मागु राहत व आधारभूत सेवा या व्यवस्था नाप छे मधेका चुने मापिन त याक्न हे पुनर्स्थापन या नीति सम्बन्धित निकाय गम्भीर ध्यानाकर्षण या नचुना वक्तव्य हान धैत अगोदो जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक विपद या जोखिम अपयावना चुङ्गु सन्दर्भ जलवायु जोखिमे दुगु मुलुक नेपाले तधङ्गु मानवीय नाप भौतिक क्षति जुगुदो जलवायु परिवर्तने नेपाय योगदान नगर्ने जुइक जुइक न थुजोगु कथ या नेपाय त तधङ्गु क्षति जुगु यथार्थ या त अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रभावकारी कथ खलुना जलवायु न्याय हानि नाप क्षति या नीति अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र पाखे नेपाल या त दैगु वित्तीय नाप प्राविधिक गुहाली सुनिश्चित या त सरकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरे दृढतापूर्वक सचेतन ध्यानाकर्षण या नचना नाप भविष्य थुजोगु विपद पाखे जुइगु जनधन या क्षति हो या त प्रभावकारी पूर्व सूचना प्रणाली जोखिमयुक्त बस्ती या व्यवस्थापन खुसी या प्राकृतिक बहाव लागा या संरक्षण नाप विपद पूर्व तयारी व उद्धार संयन्त्र या त अझ अप बालाका यङ्के त राज्य दीर्घकालीन नीति नाप योजना नाले त नेवा दे दबु पाखे इनाप या नचुना मधुकी सकलप्रति हाक्न छको भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण यासे दुःख कपी सकल छेज अपिन त धैर्य धारण यागु शक्ति दे माधका कामना या रचना हार्दिक श्रद्धाञ्जली विचाहेका नेपाल सम्बत 1146 भूलागा एकादशी 2083 भाद्र 22 गते सोमबार थो शोक वक्तव्य जुला आगन गन चाहिँ नेवा दिए दबुल ज्याजो झ्याकल लेदका थाबले जे नाचना दाया चाहिँ गन गन संयन्त्र दु जस्तै बागमती प्रदेश या खल्यागु खसा बागमती प्रदेश 13 जिल्ला डुगु जुल अलि नाप नगर समिति त दु ये यल खोपे जुल अलि अथे ये न फरक फरक थासे ये चाहिँ ये महानगरपालिका दुनी छगु चाहिँ महादेव पार्वती डबली बसन्तपुर हेजुल सा मेगु बौद्ध पाखेन छुट्टै हेजुल सारा सत्ता पागु हिसाब अनुचौँ वडा या त अलि यसले अलि थन ये चाहिँ थनिया गुलिन सम संस्था त दु अध्यादेखि केन्द्रीय मानन्दर सङ्घुल मालाकार समाज जुल ज्यापुमा गुथी जुल अलि मेमेगु सम संस्था पिन अन जोइन्टली जुगु जुल अलि नाप थन चाहिँ फोनिज एधाले पत्रकार आदिवासी तेगु पत्रकार चाहिँ महासङ्घ अलि नाप नेवा पत्रकार दबु न अन ज्याजो स बोधिका जुल यलाया खलायो खसा ज्यापु समाज अलि नेवा दे दबु मेमेगु सम संस्था संयुक्त रूपमा यागु जुल यलाया मङ्गल बजारी अलि खोपे ढासा निथासुथा यागु खन्द त नेवा दे दबु ल चाहिँ दत्रातैले याद छ मेमेगु सम संस्था मेथा मेथा याद अति हे गण्डकी अलि कोशी नदी यो कोही ठासे मलाई धराने अलि विराटनगरे निसेकया झापतको अलि खोटाङ ताप्लेजुङ डको डको गर्नु गर्न चाहिँ दिए दबु या संयन्त्र त अनाउन चाहिँ यहाँको ज्याजुल अथवा मधेस प्रदेश हेर्न विभिन्न थासे यहाँको खबर बोल अलि वयालिपा वया चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश दकुठाए मेरो चाहिँ संयुक्त रूप थो श्रद्धाञ्जली ज्याजो यहाँको जुल खला श्रद्धाञ्जली ज्याजो याना चाहिँ पीडित पिन्दजी पिन दुही साथीहरूका केनी गुख अलि वनाप नाप छिक्किन जानकारी लागि दे दबुल छुयान चुनाउँको दु वनाप दे दबुल चाहिँ धिबा मया दौसीके देवा मया
विशेष सेना नुवाकोट व रसुवा जुन बाढी पीडित बेख बेकपी स्थल हे वया चाहिँ चुना चुनादीको दुश्मनी गरेर दुखाएहरू वेकपी मध्ये नै तस्क प्रभावित अर्थ गाधाइबले वेकपिङके छुए आ मन त मलाई छिए चुकायौँ होला आज जान छुमहरू तस्कै थाको पिन त चाहिँ छगु परिवारे न्यादो न्यादो दा भिगु ज्या ज्या छुमधु उके लागि दिएर बोल धेवान मुना छुमधु छिक्पिन न इच्छा दुसा दिएर बोले छि देवा बिहे दिए फु खला दिएर बु ठो नेपायङका जिल्ला समिति नगर समिति पिस न देवा मया मया चमुजु ल र थो देवा चाहिँ झिस आतक या खलायो खस चाहिँ मिगतको खलायो खस निगु बिसवटा परिवार या त झिस वटा देवा बिहे दुनाको दुसा ले आथो थौ कने कस कथ कथ चाहिँ बिहा भनेको आ चाहिँ नुवा कोटियो लिस्ट हुन्छ म दुबो झिस गेन कय सुना रखा दाइबले अन नुवा कोटिया वडा अध्यक्ष प्लस अले नुवाकोट जिल्ला नेवादे दुबिया केन्द्रीय सदस्य नदु नरेन्द्र प्रधान वेक पिस छोयागो लिस्ट या त न अझ सर्ट लिस्ट याना अन चिसुली समाज नेवा समाज दगा दुखनी वेक पिनु नापा सुना चाहिँ धक्ले अत्यावश्यक मनु त सुखले दगा अन 36 वटा परिवार सोर्ट आउट जोगो दु वेक पिन त धक्ले नापाङ चरने बिगु अल अथि बेत्राउति पाखेन लिस्ट हो गुदु आ रसवाइन लिस्ट हो जोगु दु वक चाहिँ तस्क मा पिन त आ छुमको कास न्यादो दादी छु छु खम न तर न अत्यावश्यक जो पिन त चाहिँ छु न छु गुहाली जुइ रका चाहिँ नेवा दे दबल नुना चुनागु थो चाहिँ ज्याजु ल अनि ना पछि छ घाइते जो पिन त न गुहाली छ छु छु कथा यानाको दुसा आज छ न विशेषना चाहिँ मा पि मा बो पि चिकल तर मस्त न मन छु जो मलाई चिचिर गपि मस्त दु मस्त त न क्याम्पे चुन चुन गु तर क्याम्पे चाहिँ गाक पोषण युक्त खाना नेगु मधुनी एज या व अजापि मस्त त यो को अजापि मस्त रहे छ या दुरु माल त अले मेगुर गादै होला लिटो माल मला ल माल डाइपर्स माल अजा गुलिन गुवाली या त चाहिँ कलेक्सन यान छ मधु छिन नेवाजुया वा नेपामी जुया त हामी मला नेवाज को नेपामी जुया गुवाली या मधुसा चिकपिस नेवा दे दबुया त सम्पर्क दै दिफु।

को एकदमै मनछुने गीत प्रयास सुन्नुभयो कार्यक्रम प्रभातकालीन आवाजमा। श्रोता, अब पालो भएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा तोकिएको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर भावको जानकारी बुझ्ने। आजको दिन एक अमेरिकी डलरको खरिदर 151 रुपियाँ 42 पैसा र बिक्री दर 152 रुपियाँ 2 पैसा। एक युरोको खरिदर 175 रुपियाँ 82 पैसा र बिक्री दर 176 रुपियाँ 52 पैसा। युके पाउन्ड स्टर्लिङ 1 खरिदर 204 रुपियाँ 82 पैसा र बिक्री दर 205 रुपियाँ 63 पैसा। स्विस फ्रांक 1 खरिदर 186 रुपियाँ 57 पैसा र बिक्री दर 187 रुपियाँ 31 पैसा। अस्ट्रेलियन डलर 1 खरिदर 109 रुपियाँ 19 पैसा र बिक्री दर 109 रुपियाँ 62 पैसा। क्यानेडियन डलर 1 खरिदर 109 रुपियाँ 68 पैसा र बिक्री दर 110 रुपियाँ 12 पैसा। सिङ्गापुर डलर 1 खरिदर 119 रुपियाँ 61 पैसा र बिक्री दर 120 रुपियाँ 9 पैसा। जापानिज यन 10 खरिदर 9 रुपियाँ 83 पैसा र बिक्री दर 9 रुपियाँ 87 पैसा। चाइनिज युआन 1 खरिदर 22 रुपियाँ 56 पैसा र बिक्री दर 22 रुपियाँ 65 पैसा। साउदी अरेबियन रियाल 1 खरिदर 40 रुपियाँ 32 पैसा र बिक्री दर 40 रुपियाँ 48 पैसा। कतारी रियाल 1 खरिदर 41 रुपियाँ 54 पैसा र बिक्री दर 41 रुपियाँ 70 पैसा। थाई भाट 1 खरिदर 4 रुपियाँ 60 पैसा र बिक्री दर 4 रुपियाँ 65 पैसा। युएई दिरम 1 खरिदर 41 रुपियाँ 23 पैसा र बिक्री दर 41 रुपियाँ 39 पैसा। मलेसियन रिङ्गिट 1 खरिदर 37 रुपियाँ 28 पैसा र बिक्री दर 37 रुपियाँ 43 पैसा। यसै गरी साउथ कोरियन वन 100 खरिदर 11 रुपियाँ 28 पैसा र बिक्री दर 11 रुपियाँ 32 पैसा। स्विडिस क्रोनर 1 खरिदर 15 रुपियाँ 76 पैसा र बिक्री दर 15 रुपियाँ 82 पैसा। डेनिस क्रोनर 1 खरिदर 23 रुपियाँ 52 पैसा र बिक्री दर 23 रुपियाँ 65 पैसा। हङकङ डलर 1 खरिदर 19 रुपियाँ 31 पैसा र बिक्री दर 19 रुपियाँ 39 पैसा। कुवेती दिनार 1 खरिदर 493 रुपियाँ 79 पैसा र बिक्री दर 495 रुपियाँ 74 पैसा। बारेन दिनार 1 खरिदर 401 रुपियाँ 60 पैसा र बिक्री दर 403 रुपियाँ 19 पैसा। र अन्त्यमा ओमानी रियाल 1 खरिदर 393 रुपियाँ 29 पैसा र बिक्री दर 394 रुपियाँ 85 पैसा। हजुर, यो थियो आजको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा तोकिएको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर भावको जानकारी। अब सुन्नेछौ सुबानी मोक्तानको मिठो।